ताज इश्क मैसेज के मुलेम किए वहाँ मा पड़ी इरिसिया वक्का वा लालित राजेश लगी मैसेज इतना यार पे ने द चला हाले वाला थे ना ओ क्या ला दान न था तो ला आये न दा हिटिया पाऊने थिंग ने द अहिंसक हित रिद्धने का मटे पूरा दुना है मोरसूर ने वैसे दस आतो में पैतरी लायन ने आउ वैसे नोटा कमीन ऐया अप वेनुए नी में पैमीने ने आहे माप मट्टा में आना मन किया ने हाँ ऐके सीना हाँडे ऐसे ना अभी में सित सातुटीन इपिली लायन ने सुरंगना वी ओया मट्टे मागे में ऐस देख वागे ने उल्लाला लसना इलालित आ राजेश नो दीप देख और एड मंदे नो माँ हरी दर मैं सातुचुदर तरह हम तो गुनाने हाँ हाँ